0: multiple locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: जे तुसी भी करना चाहुने हो अपना खुद दा रेडियो प्रोग्राम ता आज ही सानू कॉल करो 647-504-1557.
2: डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी कस्टडी किस नु मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहनगे
3: SNS लॉयर्स को इन सारे सवालों दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है अपने हक जानन ले या सलाह लेन ले आज ही SNS लॉयर्स नु कॉल करो 416-655-2000
4: Get ready! GTA, are you

0: चेक कीजिए अल्फा ऑप्टिकल जकूजी एंड विलियम्स पार्क वे मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ, उनकी स्पेशल्स देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल डॉट सी ए पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-450-1999 कॉल कीजिए 9054567733। अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।
1: लो जी, तुम्हारी फेर अपने टेस्ट की गल कर लगे हैं, दिल कर रहे हैं।

0: Lattes, a product of Samosa and Sweet Factory at all leading grocery stores.
1: यहाँ से आपको ढाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात सिदोरी तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलेनी ड्राइव यूनिट 9 एंड 10 ब्रांचन टेलीफोन 905-799-9400।

सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निर्भया बिलावन महला पंचम रोग मिटाया कब उपजा सुख साथ बट पता बचरज रूप हर की निदान गुरु गोविंद कृपा करी रखिया मेरा भाई हम तिसकी शरणागति जो सदा सहाय।

चौखट हमारे राम नाथ दुख लगा ना भाई सतगुरु पूरा भेटिया जिन बंध बनाई राम नाम औखट दिया एका ने लाई रहाओ राम लिए तिन रखन हार सब ब्याज मिटाई कहो नानक कृपा पई प्रभु

साथ सहज आनंद पै पूर्ण पैसे रहा। भक्त जना की बेनती सुनी प्रभया, रोग मिटाए जीवन जापा।

कविः रोहिणी शसुदा मूर्ति सुधा दात्र सुदाशनः विषमस्थान सम्भूतां पीडां हरतु मे विदुः भूमिपुत्रो महातेजा जगतां भयकृत्सदा।

दास तुम्हारा मन पत्नी गए मारी तुम्हारे मन हम जर बदनारी मन से बाहरी दास कहा हो ताकि विलंब न लावो जय जय जय तू हो दाता सास मन हो पिता तू ना सास पकड़ कर कौन मनावो कई अब जन्म कई को आओ तू जब तुम नाम तुम्हारी पाए करो।

0: ਸਮੋਸਾ ਐਂਡ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ $4.75 ਪਰ ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ। ਬੇਸਣ, ਪਿਸਤਾ, ਰਸਗੁੱਲੇ ਔਰ ਜਸਟ $5 ਪਰ ਪਾਉਂਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਸਟਮਰਸ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਸੇਲ 2026 100% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੇਡ ਟੌਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਵੀਟਸ। ਹੁਣ 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। 2 ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 1850 ਐਲਗਨ ਰੋਡ, ਈਟੋਬੀਕੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-213-1165।
1: जी हाँ, एक आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री राम, जय आली मदद। और आपके लिए अभी हालांकि वो जो ओंटारियो में जंगली आग जिसको कहते हैं वो जारी है, तो उसकी वजह से धुआं जो है स्मग है उसकी वजह से, और सीनियर्स को खास करके अपना ध्यान रखना चाहिए, अपने आप को पानी पीना चाहिए खूब सारा, और अंदर घर के भी कितना देर रह सकते हो फिर भी कोशिश करिए, अपने आप अपना ख्याल रखिए। तो आइए इसी विचार के साथ प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ते हैं। अभी आपके लिए गुरु पूर्णिमा आने वाली है अभी, तो पहले आपको बता दें कि आप अगर फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर, बढ़िया क्वालिटी का टीवी, बढ़िया गैजेट किचन में लेके आना चाहते हो, लेटेस्ट एडवांस आपको टीवी चाहिए, आपको बारबेक्यू चाहिए, तो आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे आपको बढ़िया प्राइस, बढ़िया क्वालिटी का सामान मिलता है, और आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है एक लोकेशन। दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्स में है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाइए, उनके स्पेशल देखें और फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 9057990045। आपके लिए बड़ी खुशी की खबर है कि अब आपके लिए मास्टर प्रिजन डिपो लंदन में खुल चुके हैं, खुलेंगे बहुत जल्दी, ओपनिंग होगी। तो अगर आपका कलिजन का काम हो किसी तरह का भी, तो आप masterkollision.com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारियां ले सकते हो। लंदन के आसपास के इलाके में आपको किसी किस्म का भी कलिजन का काम करवाना हो तो आप मास्टर कलिजन डिपो पे जाइएगा, आपको हर तरह की बहुत बढ़िया सर्विस मिलेगी, बहुत बढ़िया प्राइस भी आपको मिलेगी, तो आप मास्टर कलिजन डिपो पे जाइएगा। और अब अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी बेचनी है किचन वाटर वॉल्व में, तो आप रिसीविंग को कॉल करिएगा 5 1256 12 65 195461260। घर लेने के बाद आपको मूव भी होना पड़ता है, तो मूविंग के लिए एच के मूवर्स बहुत बढ़िया, उनकी बहुत सारी टीम्स हैं कनाडा भर में आपको मूव होने में मदद करते हैं। तो अगर आपने मूव होना है तो आप आज ही अपना ट्रक बुक कर लो 416-524-704 पर कॉल करके 416-524-6704 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो आइए अब आपको एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाते हैं।

जी, लता जी का गाया हुआ बहुत ही प्यारा सा गीत है आपके लिए। तो अब और भी बहुत से बढ़िया बढ़िया गीत आपको सुनाएंगे, रात को भी आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे, बढ़िया बढ़िया गीत लेकर के आपके लिए, मनोरंजन बढ़िया सा लेकर के। तो अब आपके लिए आजकल समर है तो सड़क पे आपको बहुत ध्यान से गाड़ी चलानी है, क्योंकि बहुत सारे बैड ड्राइवर्स हैं, एकदम आपके सामने आ जाते हैं, आपकी टाइमिंग एकदम खराब कर देते हैं। तो इसलिए सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर आप अपने कार के आगे काफी सारी जगह खाली छोड़ के चलो तो अच्छा है, तो बहुत सारे ड्राइवर आपको हॉर्न देंगे, आपको पुश करेंगे, लाइट से फ्लैशिंग लाइट देंगे कि जल्दी जल्दी चलो, आगे आगे जाओ, यू नो। तो आपको आपका टिकट या आपको कोई तकलीफ होगी वो तो नहीं झेलेंगे ना, इसीलिए फिर आप इस तरह की चीज को जो है इग्नोर करें और सड़क पे रोडरेज ना करें, गुस्से में ना आए। और साथ में आपको ये मैं बताना चाहती हूँ कि आजकल बहुत सारे लोग जो हैं सड़क पे एक्सीडेंट्स फेस कर रहे हैं, जैसे कि आप ने टर्न बना ली तो वो जो आगे वाला होता है वो अचानक खड़ा हो जाता है, और आपको तो टर्न बनानी ही है क्योंकि दूसरी तरफ से ट्रैफिक चलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए अगर आपको शक है कि जो आगे वाला आपके कार वाला वो थोड़ा फनी तरीके से पेश आ रहा है तो आप टर्न बनाए ही ना, लाइट की वेट कर ले, अगली बारी लाइट होगी तो फिर आप टर्न बनाना अपनी सेफ्टी के लिए। और फिर दूसरी बात ये है कि ऐसे लोगों को किसी से हमदर्दी नहीं कि जो एक्सीडेंट स्टेज करने की कोशिश करते हैं, तो उनसे आपको अपने आप को बचाना है। बस यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती थी, क्योंकि समर टाइम है तो सभी का मन होता है कि बाहर घूमने निकले, सर्दियों में तो अंदर ही बैठे रहते हैं कि चलो जरूरत नहीं है तो मत जाओ, अपने जो जो भी आपने लेना हो तो आप अपना ट्रिप प्लान करके जाते हो। तो ये आपको अगर अपने फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर बढ़िया लेना है, बढ़िया टीवी लेना है, बढ़िया आउटडोर फर्नीचर लेना है, बढ़िया बारबेक्यू चाहिए, इतना थोड़ी सी सेटअप करवानी है, तो ये सारा कुछ आपके लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स से मिलता है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड्रॉइड को रोड पर मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल में है। उनके स्पेशल देखने के लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए, फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल करो, 905-799-0045। और अब आपके लिए समोसा फैक्ट्री एलबीएम पर मौजूद है, उनके वहाँ बहुत सारा सामान बिकता है, जहाँ पे सामान बहुत बिकता हो तो आपको खाना जो होता है फ्रेश मिलता है, चाहे मिठाइयाँ हो चाहे खाना हो, बढ़िया क्वालिटी का मिलता है। तो आपके लिए अब बहुत बढ़िया सा गीत सुनाते हैं। पहले आपको बता दें कि अगर आपने ट्रक पे करवानी है तो 1715 मौजूद है बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर सेंटर, और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर लो 905-625-0055 पर कॉल कर सकते हो। आपने आपके लिए खुशी की खबर है कि अब मास्टर कोलिजन डिपो लंदन में खोलने जा रहा है, तो बड़ी ग्रैंड ओपनिंग होगी तो आप जरूर जाइएगा, और अपनी कार का जो भी आपको कोई काम करवाना हो तो कोलिजन का काम तो आप मास्टर कोलिजन डिपो पर जा सकते हो लंदन में आसपास के इलाके में भी। अब आपको अगर किसी किस्म की भी आपको मिठाइयाँ लेनी है, खाना लेना है बढ़िया, तो न्यू इंडिया स्वीट्स रेस्टोरेंट ब्रिटानिया ग्रैंड दुबई मौजूद है, और जानकारी के लिए 905-844-1780 पर कॉल करो, 905-814-1730 पर न्यू इंडिया स्वीट्स रेस्टोरेंट को कॉल कर सकते हो। अब अगर आपने मूव होना है तो HK मूवर्स आपके लिए, उनकी बहुत सारी टीम है, आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाएंगे, कनाडा भर में मूव करने में मदद करते हैं। तो आप अपना ट्रक बुक करने के लिए मूविंग के लिए 416-524-7004 पर कॉल कीजिए, 416-524-6704 पे कॉल कर सकते हैं। तो आइए अब आपको ये एक बढ़िया सा गीत सुनाते हैं।

0: जी हाँ, एक बार फिर से
1: आप
0: सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार मीटअप, क्योंकि आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा तो अब आपके लिए और भी बहुत प्यारे प्यारे से गीत सुनाते रहेंगे आपको। रात को भी 10 से 11 बजे आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। तो अब अगर आपने फ्रिज स्टोव लेना है, वाशर ड्रायर लेना है, फिर आपको आउटडोर फर्नीचर चाहिए, बाकी क्यों चाहिए, टीवी बढ़िया से चाहिए, किसी को गिफ्ट लेके देना है, शादियाँ आजकल बहुत हो रही हैं, तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स से जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स और काम पर जाकर उनकी स्पेशल देखिए। एक लोकेशन उनकी आपके लिए इंटरमॉडल, उनकी गोल्फ में है, तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स और काम पर जाकर आप उनकी स्पेशल देखिए। फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए। 905-799-0045 टोरंटो आसपास के इलाके में घर खरीदना बेचना चाहते हो, खुशवंत सिंह बैंस को कॉल करो 416-6773-4167-1313 पर आप कॉल कर सकते हैं। तो आपके लिए एक और बहुत ही नटखट सा गाना मैंने चुना है, तो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग।

0: ਨਹੀਂ ਅਲਕਾ ਜੀ ਦਾ ਊਸ਼ਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਦਾ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਗੀਤ ਥਾ ਤੋ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਉਸੀ ਕਾ ਜੇ ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਉਸਨੇ ਥੇ ਤੋ ਉਨਕੀ ਤੋ ਫਿਲਮ ਮੇਂ ਕਮਾਲ ਕੀ ਥੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘਰ ਸੇ ਸਾਥ ਆਪ ਔਰ ਮੈਂ ਹੂੰ ਆਪਕੀ ਹੋਸਟ ਮੀਰਾ ਆਪਕੋ ਜਿਨ੍ਹੋਂਨੇ ਯੇ ਗਾਣੇ ਸੁਨੇ ਥੇ ਪਸੰਦ ਕੀਏ ਥੇ ਹਮਨੇ ਉਨਕੋ ਉਨਕੀ ਪਸੰਦ ਕੋ ਲੇਕਰ ਦੀ ਹੈ ਆਪਕੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਘਰ ਸੇ ਸਾਥ ਰੇਡੀਓ gmail.com पे ईमेल कर सकते हैं। जो आपकी कोई पिकनिक है, अभी समर में बहुत सारी पिकनिक हो रही हैं, तो जैसे हैमिल्टन मंदिर वालों की भी पिकनिक है मेरे ख्याल कल है, तो आप जरूर उसमें शामिल हो सकते हैं, उसमें जा सकते हैं, तो हैमिल्टन मंदिर वालों की पिकनिक है। अब आपके लिए अगर आपने मूव होना है तो HK मूवर्स आपकी पूरी मदद करते हैं कनाडा भर में मूव होने के लिए। अब और बहुत सारी उनकी टीम्स हैं, आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाते हैं, और अपना ट्रक बुक करने के लिए मूविंग के लिए 416-524-404 पर कॉल कीजिए, 416-524-6704 पे कॉल कर सकते हो। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार, तो आइए आपको एक और बहुत ही आरजू फिल्म का ये गीत सुनाती हूँ। आरजू फिल्म बहुत ही कमाल की फिल्म थी 1965, उसमें महमूद थे, आपको मौका मिला तो जरूर देखना।
1: फूलों की रानी,
0: मौसम हर तरफ फूल खिले।

जी हाँ, उम्मीद रखती हूँ कि आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। तो अब आजकल समर है, बच्चों को छुट्टियाँ हैं, तो बच्चे कई बार सड़क पे खेल रहे होते हैं, तो उनका ध्यान रखिएगा जब भी आप गाड़ी चलाइएगा। और हाईवे पे जब गाड़ी चलाते हो तो जो आसपास में देखिएगा ट्रक वालों का, उनसे डिस्टेंस रखिएगा। और फिर आपको अगर कोई जैसे किसी की मौके भी आपको गाड़ी जो है ना अपना ध्यान से चलाइएगा। तो अब मौसम थोड़ा गर्मी है, तो जो आप अपने आप को खूब कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। तो अब आपके लिए एक और गाना बहुत ही प्यारा सा सुना है, पर पहले आपको बता दूँ, अगर आपने लड्डू जलेबी या समोसे बढ़िया मिठाइयाँ लेनी है तो आप समोसा स्वीट फैक्ट्री LGM पे जाइएगा। उनको ऑर्डर बुक करने के लिए 416-213-1100 पर कॉल कीजिए। 416-213-1165। अगर आपकी कोई पिकनिक होने वाली है, अगर आपके घर में कोई फंक्शन है, खाना ऑर्डर करना है, तो समोसा स्वीट फैक्ट्री वालों से करिएगा। आपको एकदम फ्रेश खाना, बढ़िया खाना मिलेगा। अब आपके लिए ये गीत पेश है, लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर से साथ, और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा।

बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो मुझे पक्का यकीन है आप जैसे मुझे ये गाने सुनकर के बहुत ही बढ़िया अच्छा महसूस हो रहा है, आप भी जरूर बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे ये गाने सुनकर के। तो अब आपके लिए पंजाबी का गीत सुनाते हैं मिस पूजा का। जी हाँ, तो अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिएगा, गर्मी है तो पानी खूब पीजिएगा, अपने आप आसपास में गाड़ी चलाइएगा तो ध्यान से चलाइएगा, बच्चों को छुट्टियां हैं तो सड़क पे आप ध्यान से जाइएगा। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको आप

हाजिर हो जाएंगे बहुत बढ़िया बढ़िया गीत लेके आपका मनोरंजन करने के लिए, आपके साथ समय बताने के लिए। तो नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाण स्वाद पला, हैव ए वंडरफुल वीकेंड। जो भी है आप जरूर वॉक के लिए जरूर जाइएगा। तो और कुछ ना कुछ एक्सरसाइज जरूर कीजिए, चाहे घर पे बैठे चेयर पे ही क्यों ना कर लें, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ अपनी एक्सरसाइज का जरूर ध्यान रखें अभी समर में। तो ज्यादा ना करें, थोड़ा बहुत जरूर हिले जुले, अपने शरीर को फिट रखें, अपने आप को फिट रखने के लिए। तो इसीलिए आप जरूर कोई ना कोई प्रोग्राम अपने लिए बनाएं, एक्सरसाइज का प्लानिंग करें। तो एंजॉय दिस ब्यूटीफुल।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स

तनासरी महला पंजवा कार बारवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कृष्णा आगाना

तेरी, नाम तेरा, कुछ नहीं जो मेरा, स्वास भी तेरे, एहसास भी तेरा, एक तो ही सतगुरु मेरा। मैं हाँ संतोष कौर, मैं तुहाडा सब दा स्वागत करदी हाँ अपने प्यारे जे शो रेडियो आवाज़ ते। ते साडा सारयां दा सफर 1 बजे तक इंज ही बनिया रहेगा, ते सुनदे रहो साडा शो रेडियो आवाज़।

चलो जी हुन शुरू हो गया है अपना साथ। सो कॉल करो 905-673-3337 ते अज बहुत वधिया वधिया डील्स आ रही है। सो साढ़े सारे प्राउड स्पॉन्सर सानू इन्ने वधिया वधिया मैसेजेस कर रहे और सोहनिया सोहनिया डील्स दे नाल। सो सब तो पहला मैं गल करांगी नज़ारा रेस्टोरेंट दी। नज़ारा ते तुसी जाना है ते सारे ने लेना है नज़ारा। नज़ारा दियाँ डील सुन के सारे दे मूँह च आ जाना है पानी। और अगर तुसी सारे ने अपने घर कोई भी किसी तरह का भी फंक्शन करना है किसी तरह की कोई पार्टी करनी है तो मैं कहांगी एक बार तुसी नज़ारा ते जरूर जाओ। उन्हां दे पेज ते जाके देखो रीसेंटली उन्होंने बहुत वधिया पार्टीज ऑर्गेनाइज कीतियां हैं। जे किसी का बेबी शावर हैगा या किसी ने किसी नूं कोई भी सरप्राइज देना आ जेंडर रिवील करना आ या इंगेजमेंट पार्टी है या छोटा मोटा तुहाडा गैट टूगैदर है किसी की बर्थडे आ ते सारे जाने ने पहुँचना नज़ारा और तुहानूं कुछ ना कुछ स्पैशल देंगे। सो नज़ारा दी टीम का तुसी नंबर नोट करो 905-451-2600 905-452-2600। कभी भी किसी ने कोई पार्टी करनी है या इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना है तुसी बस नज़ारा दी टीम नूं जाके मिलना है। सारिया गेम्स तुहाडियां हर तरह की अरेंजमेंट उन्होंने करना और रीसेंटली जिहड़ी उन्होंने पार्टी की वह तो देख के मेरा मन खुश हो गया। जिवें असीं करदे हुंदे सी ना इंडिया दे विच पार्टीज हुंदियां सी विआह हुंदे सी आउटडोर इनडोर दोनों तरफ असीं पूरी मस्ती विच रहिंदे सी। सो सेम नज़ारा ने भी तुहानूं उही सर्विसिज दित्तियां। एक बार जाके नज़ारा दा तुसीं देखो सेटअप और नज़ारा ते जाके तुहानू सारयां नू आ जाना है नज़ारा।

0: 1530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: यार बिजनेस का माड़ा हाल होया पे, कितनियां तरकीबां लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन रही।
2: निर्बल बाबे ने क्या से कृपा हो जाओगी, नींबू मिर्चा टंगो पर कृपा ता हो ही नहीं।
3: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ले पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया।
4: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता।
5: रेडियो आवाज, रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 to 10 बजे तक, एवरी सैटरडे 10 to 1 बजे तक, प्राइम टाइम ते। वधेरे जानकारी ले तुसी कॉल कर सकते हो 416-518-3200.
6: You are listening to your favorite radio show, Radio Awaz, The Voice, Zindabad, Zindabad. For advertising, please call 416-518-3200.

0: Remax Gold Realty Inc. at 416-265-2222.
1: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੱਧ ਸਪੇਸ, ਕੰਫਰਟ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਟੈਮਰੇਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੂਈਟਸ, ਉਹ ਵੀ ਲੀਸ ਤੇ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਟੂਰ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 780-239-5845, 780-239-5845।
2: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca.
3: पापा पापा सुनते क्यों नहीं, चॉकलेट लेनी है।
4: अजी सुनते हो, कहाँ गुम हो?
5: अरे महेश अभी तक ऑफिस नहीं आए, पता नहीं मीटिंग थी। हेलो हेलो हेलो।
6: जब मैं रेडियो आवाज सुनता हूँ तब तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बम टू बम ट्रैफिक एंड बम टू बम कॉल्स, ऐसा ही होता है जब आप सुनते हैं हर सुबह 9 to 10, मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे 11 to 1, रेडियो आवाज।

0: गुड आफ्टरनून, वेलकम टू डेव प्राला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशा वादी उम्मीद करते हैं तुहाडा अज्ज दा दिल अच्छा गुजरिया होगा। साडी कोशिश रहेगी अगले एक घंटे तुहाडे ढेर सारे डालर की बचत करिए, चाहे ब्रैम्पटन टीवी अपलायंसेस होए, चाहे ग्रैंड फर्नीचर होए, जां असीं कोई ना कोई तोहफा तुहानू दे दईए, नो प्रॉब्लम। लेकिन साडे नाल इस समय स्टूडियो च सुल्तान जी जुड़ चुके ने। सुल्तान जी, पुराना स्वागत है।
1: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: सुल्तान जी, ना आपां जे गल करनी आ पैनल रेडी दी
1: जी,
0: ना गल करनी आ टेलीविजना दी,
1: ठीक है,
0: ना गल करनी आ लॉन्ड्री दी,
1: ठीक है जी,
0: आपां गल करनी आ नायगरा फॉल दी, जिथे घर की कलोजिंग हो रही है। 36 इंच के कटआउट दिते हुए स्टोव रखने लई, 30 इंच का स्टैंडर्ड होंदा, 30 इंच का जिहड़ा उहदा 1500-1500 जिन्ने की भी प्राइस होनी मिल जाता
1: जी,
0: वह जिहड़ा 36 इंच का
1: बिलकुल इस तरह ही है जी। यह एक स्पैशल कम्यूनिटी है जी, जिहड़ी कि बिल्डर ने हुणी तैयार की है। उत्थे साडियां तकरीबन कोई 8-9 डिलीवरियां जा चुकियां दे भाजी
0: जी।
1: हर एक घर च जिहड़ा ना उत्थे 36 इंच का कट आउट होया होया, ते 36 इंच 5000 तो घट कोई स्टोव हुंदा ही नहीं अज तक। डिलीवरी गई, दो गई, तीन गई, पहले तो 30-30 इंच रेगुलर स्टैंडर्ड जेड़े हुंदे।

आदाब नमस्कार प्यार सत्कार दे नाल सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड इवनिंग। वापस आ गए हैं जी शनिवार की शाम की महफल दे विच एक बार फिर तो तुसी ठीरन कर चुके हो थोड़ा अपना प्रोग्राम रेडियो अंदाज थोड़ी अपनी होस्ट परम दे नाल। मेरे वालों साडे सारे लिसनर्स नूं सारे परिवारां नूं बड़े अदब सत्कार दे नाल सत श्री अकाल बहुत सारा प्यार ढेर सारा सत्कार वेलकम जी आयां नूं खुशामदीद एंड स्वागतम।

आंखों में है इकरार तो इनकार है लब पर, उस शोख की देखी है हया और तरह की। जब दर्द मेरे दिल में नहीं है और तरह का, ऐ चारा अगर क्यों है दवा और तरह की। जिक्र दर्द दिल का चलने लगा है तो ये दर्द ना तो आंखों से बाया होता है और ना ही लिखने से। हाँ, मगर जुबान कभी कभार बयां कर देती है, जैसे लता मंगेशकर ने अपनी मखमली आवाज में इस गजल को कुछ यूं कहा है।